समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

रंक सहस्र नयन होय। यावरी तो महाराज गौतम कल्माश पादा पुसे कुशल क्षेम। राज्य राष्ट्र ज प्रजा अमात्य परम सुखे करून नांदती की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्म आचरती की समग्र। पशु सेवक पुत्र कलत्र समस्त सुखरूप आहेत की। राव म्हणे आपुले कृपे करून

इंद्रसनकादिक ब्रह्मपुत्र तेथेची वसती अहोरात्र जेथींसे पाषाण तरुवर समग्र निर्जर अवतरले।

होय प्रसन्न सदाशिव। आमावास्या संक्रांति सोमवार प्रदोष पर्व काल शिववास। समुद्र स्नान करिता समग्र फल होय सकल तीर्थांचे। रावण कुंभकर्ण।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

तरी रंक सहस्र नयन होय। यावरी तो महाराज गौतम कल्माश पादा पुसे कुशलक्षेम राज्य राष्ट्र ज प्रजा अमात्य पर।

किन्नर गंधर्व गायक सुरस तोषविति महेशाते ते अति उत्तम स्थान तेजोमय प्रकाश गहन नाना वृक्ष लागले सघन

होय प्रसन्न सदाशिव। आमावास्या संक्रांति सोमवार प्रदोष पर्व काल शिववास समुद्र स्नान करिता समग्र फल होय सकल तीर्थांचे। रावण कुंभकर्ण बिभी

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं एक भक्ति रचना, इसका गीत संगीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं रविशंकर शर्मा जी के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की गीत रचना। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं, सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।